नज़म सुन रहे थे। तो अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरह बढ़ते हैं। इस हिस्से में हम आपको एक खूबसूरत सी नज़म सुनाते हैं, तो चलिए आइए नज़म सुनते हैं।